गुरु जी। श्री नानक पद पंकज वंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। अमरदास गुर हृदय ध्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ समत पर।

श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बिसाला।

0: गुरु नानक की गद्दी साध संघ जी आना आना यह तो आ ही जाना जेड़ी ये माया चरणा की दासी गुरु की रिद सिद्ध नावे की दासी है यह तो रिदिया सिद्धिया नाम पदार्थ होना ही होना सब पर जलता कहिंदा भी गुरु अर्जन देव साहब महाराज नूं कहिंदा वो लाहौर में आया होया तुहाडे कोल नहीं आया हिंदू सिखा तो बेअंत धन प्राप्त कर रहा है
1: दोए लाख को दंड लख है क्या
0: उन्हों दो लख दा दंड लाया होया सी धन गुरु अर्जन देव साहब इन्हां ने दंड यह लाया होया सी जहांगीर ने अपने पुत्र नूं घरों बेघर भाव देश निकाला देता सी देश निकाला क्यों दिता सी यह भी संगत का ध्यान दवा दिए जहांगीर राज करना ही भुल गया सी नशा ही पूरा सी वधिया तो वधा वधिया नशा छकना महंगी तो महंगे मद पीने ते मद पीन नाल मत फिर अरल बरल बोलना जिहड़ी नूर जहां खुसरो दी मतरेई मां सी जहांगीर दी छोटी बेगम ओही राज संभाल लैंदी ओ भी राज संभालण दा उहनूं कोई बुद्ध सुध नहीं सी इन्हां कारणां करके एक दिन खुसरो ने कहा अब्बा जान तुसी मैनूं राज गद्दी दे दिओ राज अपना खड़बड़ी पै सकती है पर उन्हें उन्हों गल सुनदिया ही अपने सिपाहियों नूं कहा इहनूं देश निकाला दिओ फड़ो कढ़ो ऐसी गल होई तो उन्हों देश निकाला दे दिता सी वो जो देश निकाला दिता ते अरब कंट्री नूं जा रहा सी राह जांदा जांदा हो टिकाणा कर लिया उन्हें गोविंदवाल साहब दी रस्ता हुंदा ही जाण दा गुरु के लंगर विच आ गया लंगर छकिया इहने कहा तुहाडे विरोधी नूं तुहाडा पुत्र तुसीं उन्हों देश निकाला दिता ही ते गुरु अर्जन देव साहब ने पनाह दित्ती है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਥੇਰੀ ਪੂਜਾ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂ

दर्श थोड़े नाल है निहाल हो गया, दर्श थोड़े नाल है निहाल हो गया, सारा ही इलाका खुशहाल हो गया, सारा ही इलाका खुश

अमर हो जाते ने कोमल ही जो कर दे कुर्बानी, ओ अमर हो जाते ने कोमल ही जो कर दे कुर्बानी, ओ अमर

मुश्किल यार बने जद मुश्किल यार बने जद मुश्किल यार बने बहादुर सी ना मुख धो कर दे मन हुक्म प्यारे दा अपने कदम अगे

गाली ओछिया सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया ना बिना सब कूड़ा काली ओछिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहा मोहे बाद हंकार सरपद रुनिया सुख न पाए न मूला नाम विछुनिया मेरी मेरी तारा बंधन बंदिया नरक स्वर्ग अवतार माया तंदिया सोधता सोधता सोध तत विचारिया नाम बिना सुख नाहीं सर पर हारिया आम है जाए अनेक मन मन जन्म ते बिन बुझे सब वादा जोनी परमते जिनको दयाला तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत आनंद के जिस बुझाए आप नेड़ा तिसे

0: गुण गावा दिन राता, नानक चाओ एहो विसनाही दातारा, अपना नाम देह गुण गावा दिन राता, नानक चाओ एहो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। सोट महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौंकी चौं गिरद हमारे। राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूर्ण पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ अविनाशी। ताकि सेवन बिरती जासी, आनंद करे तेरे दासा। जा पूर्ण होई आसा, बिलावन महला पंजेवा। ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरण आई। चौगिर्द हमारे राम, कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई। राम नाम औ

0: देख देख पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे
1: गज गज कर अभी आवे नहीं आ जावे मेरी पीरी दा मालिक धन धन साहब श्री गुरु हर पास हर गोविंद पाशाह जी दा मानु पावे
0: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की

अमुलो मुलाख्या न जाय आख आख रहे लिवलाई आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े कर है वख्याण आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तै गोविंद

वाजी नाद अनेक असंखा किते वावन हारे किते राग परिश कहियन किते गावन हारे गावे तोहण पौन पानी वै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख

जाही। नाउ हे मर है न ठगी जाही, जिनके राम वसै मन माही, तिथे भगत वसै कीलू। करह आनंद सच्चा मन सोई, सच खंड वसै निरंकार, कर कर विखे नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथे ता अंत न अंत, तिथे लोह लोह आकार। जिव जिव हुकम त्वै त्वकार, विखे विकसे कर विचार, नानक कथना कर डासार। जत पहारा तीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल। घड़ी है सब

निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है।

रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अधो

समस्त पराजी समस्त अस्तता मंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपीस हैं पुजांग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त निधान्य नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंगा गंजे नमस्तुंगा पंजे नमस्तुंगा काले नमस्तुंगा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धंग निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले।

है, कि अफूल गुनाह है, कि साहान साह है, कि कारण कुनिंद है, कि रोजी दिहंद है, कि राज करहीम है, कि कर्मंग करीम है, कि सर्वंग कली है, कि सर्वंग दली है, कि सर्वत्र मन है, कि सर्वत्र धन्य है, कि सर्वत्र गौन है, कि सर्वत्र पौन है, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पिस है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र सज है, कि सर्वत्र दीन है, कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जाहो, कि सर्वत्र पाहो, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पिस है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पल है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र काज है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र सुख है, कि सर्वत्र भूख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र दिश है, कि सर्वत्र पिस है, कि सर्वत्र मन है, सदैव अंग प्रधान्य है, कि सर्वत्र जापे है, कि सर्वत्र थापे है, कि सर्वत्र पान है, कि सर्वत्र मन है, कि सर्वत्र इंद्र है, कि सर्वत्र चंद्र है, कि सर्वंग कलीम है, कि परमंग फहीम है, कि अकल अलम है, कि साहिब कलम है, कि हुस्नुल वजू है, तमामुल रुजू है, हमेशुल सलाम है, सलीखत मुदाम है।

है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रवाह है, सुजुगत सुधा है, सदैवं स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओअंगाद रूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्ये अगंजे अगाध्ये सुभं सर्वभाग्ये सुसर्वा अनुराग्य त्रिभुक्त स्वरूप है, अचिज है, अशूत है, कि नरकं प्रणास है, पृथ्वील प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैवं सदा है, विपुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुगत प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी शांद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंद है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अदिख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्ब है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, सावल छंद त्व प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शांद त्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीमल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबल निवाज है हरीफल सिकन है हिरासल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तल अजीज है परंग परम ईस है समस्तल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशल अपीख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है।

मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अंगंज हर हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनसिज अंग आसन अपहंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तृत तर तुरहास आजान बाहु एक सदाहु ओंकारयाद कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अज जना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर भूल मना छंद त्वे प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर।

करुणाकर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कलखंडस है, परते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी तृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वंभर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्वपायक है, पवपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जाप

तानुत जीटीते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी।

जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद्य नील अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पावत बिदा ताको

किल विख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री सतजब पहे दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला मनवा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह संगता हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता झंडा नाल बन के साड़े गए तेगां विच उबाले गए पुठियां खल्लां लुहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा संग निभाही तिना समूह शहीदां दी पावन पवित्र कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे पवित्र यात्रा अते दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा हे अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी तिना दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल जी का दान। प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाण्यो के माण निताण्यो के तान न्योट्यो की ओट सच्चे पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी। धन हो साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जीओ महाराज। धन हो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज। धन हो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जिया ने अपार कृपा मेहरामत बख्शिश कीती अमृत वेले दे दीवान सजे सजे दीवाना अंदर आप जिया दे प्रकाश हुक्मनामिया तो उपरंत अमृत वेले दिया अमृतमई बाणिया श्री जपजी साहिब श्री जाप साहिब श्री त्वै प्रसाद सवैये श्री चौपई साहिब अते श्री आनंद साहिब जी के आप जिया ने मेहरामत करके जाप करवाए हन। गुरबाणी पढ़दियां सुनदियां होईयां सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शिश करनी अगाह वास्ते समत बख्शिश करनी पातशाह। दर घर आईया संगतां दियां हाजरियां पेटावां चरणा ते प्रवान कर लैणियां सबना नूं दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शिश करके निवाजना कारोबार परिवार रुजगार वादे वरकतां बख्शणे मनोकामनावां भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां जी। मेहरबान जी आप जी के हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजर है मेहर करो आप जी के दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगतां विच वरताउण दी आग्या होवे। जो जी शके सो आप जी का ही नाम जपे कला वाहिगुरु जी की वरते
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸੋਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸੇਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

कष्टम मेघ राघव गावहे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी।

प्रिया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुआ सिफत खसाम दे नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठा सचे पादशाह जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पादशाह सिरशाह दा साहू जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहू जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहू सतनाम वाहिगुरु साहिब जी टोडे।

सगले दुख पलायना रहाओ, जो मांग है सोई सोई पाव है, सेव हर के चरण रसाइना, जन्म मरण दोह ते छूट है, भव जल जगत तराइना।

निरंकार निराधार निराहार निर्विकार अजूनी अकाल अपरंपर अपेव है, निर्मोह निर्वैर निर्लेप निर्दोख

बियले मन एक न जेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गले आ रहा ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आस

काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया

की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम का वहो, आप हाथ

संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा सिरियस तो जुजू करिय हो रच्छा राख ले हो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन

ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदि अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन सृष्ट सब तारै

असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप आपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तजकीनी उत भुज खान बौहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छुआ सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा।

अमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के।

पाया तुझ जिन को से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो।

कोई पावह सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दुहू ते छूट है भव जल जगत तरायण, खोजत खोजत तत बिचार्यो दास गोविंद परायण। अविनाशी